0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधा।

0: गए हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे, परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूँगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थीं। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: Good, sir.
1: Fine. Good. Okay, so tell me, what do you like most?
2: I like playing, sir.
3: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
4: Sir, I like singing.
5: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
6: Yes, sir.
3: We like.
1: Lovely butterflies?
6: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
6: Yes, sir. We like it.
1: That's very nice, children.
3: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
6: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
6: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
6: Like us?
1: Would you like to listen?
6: Yes, sir.
3: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
6: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem.

0: Professor Rajendra Pal, Technical Coordinator Buddy Langlingdo, Child Singer Angel, Child Artists Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish, Sound Recordist Mayank Kumar, Assistance in Production Kusum Lata, Directed and Produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
3: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: अरे आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है। अरे दलाई लामा है, दलाई लामा। सच में?
1: बड़ी बात है। वाह भाई वाह। मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ
1: अरे देखो देखो उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसा ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ
2: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते। अरे चलो चलो, नजदीक आ गए।
2: आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
5: 10 दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात

0: में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था। संभवतः इसलिए उन्हें व्यारा वाला के नाम से जाना गया।
1: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारा वाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
2: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही है।
0: समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
1: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
3: होमी। ओ होमी।
4: जी माँ, आती हूँ।
3: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं?
4: क्या बात है माँ?
3: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
4: जी माँ, बिल्कुल।
3: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
4: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
3: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
4: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
3: अरे
4: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
3: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
4: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
3: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
4: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
3: कुछ नहीं होमी, बस करो।
4: माँ सुनो तो। अरे
0: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
5: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
1: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
0: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
1: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
0: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
4: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
6: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ बैठो।
4: जी जी सर, धन्यवाद।
6: होमी जरा इसे देखो।
4: जी।
6: ये आज का समाचार पत्र है।

0: जरा यहां देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो किसकी फोटो है ये?
1: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
0: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
1: जी।
0: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है। और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
1: धन्यवाद सर।
2: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशॉ जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
3: मानेकशॉ स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशॉ ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। 8 महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए 1 रुपया बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
2: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
3: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
4: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
2: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
3: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
4: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
2: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार पहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

0: मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
1: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
0: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
1: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले

0: देखना चाहते हैं कि ये चार है अथवा छह है, जबकि स्ट्रोक को खेला और ये छह रन है या नहीं। नहीं, पहले टिपक आ गई, गेंद हवा में जैसे ठहर गई हो और फिर नीचे घूमती हुई नीचे गिरी और बाउंड्री लाइन से मुश्किल से एक कदम पहले टिपक आकर फिर सीमा रेखा से बाहर हो गई। चार रन, कभी 33 32 गेंदों पर। अब फातिमा साना कप्तान पाकिस्तान की अगली गेंद करने के लिए, ओ पैड पे लगी, आउट हो जाएंगी, निश्चित रूप से LBW दिया जाएगा। नीचे रहती हुई गेंद और कविशा का एकाग्रता बंद हुई, रिफ्लेक्सेस नहीं दिखा पाई, अचानक नीचे रह गए, लेकिन उनके इशारे से लग रहा है कि बैट पे भी लगी थी गेंद, DRS है नहीं, लेकिन मायना रखता है अंपायर का निर्णय जिन्होंने उंगली उठा दी है और एक और क्षति हो गई है श्रीलंका को। बैट पे लगी और फिर उसके बाद जाके पैड पे लगी और क्यों आउट दिया ये समझ में नहीं आया। महंगा साबित होगा क्या श्रीलंका के लिए, ये समय बताएगा, लेकिन एक और खिलाड़ी आउट हो गया श्रीलंका का और साना का ये चौथा विकेट।
1: व्हाट अ स्प्लेंडेड ओवर दिस हैज बीन बाय द पाकिस्तान कैप्टन साना, अकॉर्डिंग फॉर द टू वेल सेट बैटर्स। कविशा दिलारी गॉन फॉर 33 ऑफ 33 बॉल्स एंड बिफोर दैट इट वॉज द वेल सेट हर्षिता, and this over has once again brought Pakistan back into this game. Vineet, 17 overs gone by, Sri Lanka 109 for 6 now, and this semi-final, the second semi-final of Women's Asia Cup 2026, going the distance, really turning out to be so interesting, Vineet.
0: और मैं समझता हूँ जिस तरह से निर्णय हो रहे हैं किसी भी इस स्तर के टूर्नामेंट में DRS के बिना, इतने संसाधन है क्रिकेट में, DRS अवश्य होना चाहिए।
1: Yes, couldn't agree with you more on that count, Vineet, because one small decision, no umpire makes a mistake intentionally, but one small error can really derail a team's fortunes. 20

0: दिया है और इसके साथ ही 6 रन। क्या इस शॉट के साथ ही श्रीलंका एक कदम और आगे बढ़ गई है जीत के लिए। अब उनको चाहिए, बहुत कम रन रह गए, 11 गेंदे 12 रन अब जीतने के लिए चाहिए। ये गेंद लूप बनाती हुई फ्लाइट कर दी थी इस गेंद को, फुल टॉस पर ऑन साइड में गेंद को खेला, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से बिल्कुल हवा के रास्ते, हवाई स्ट्रोक जिसको कहते हैं, और गेंद चली गई बाउंड के बाद। फातिमा सना इस समय सदमे में खड़ी हुई हैं। एक एक रन कीमती है, एक एक गेंद पे होने वाली प्रतिक्रिया कीमती है। और क्या यहां से, जबकि ये नो बॉल का इशारा अंपायर का अब लेट आया है, 11 गेंदे और अब 5 रन चाहिए। वो छठा, वो जो छक्का गया था उसका माइनस नहीं किया गया था, फ्री हिट भी मिलेगा। क्या इस गेंद पर ये मैच खत्म हो सकता है? 126 6 विकेट पर, कौशन ही सामने है, विकेट कीपर बैटर। और ये क्या विडंबना है कि कप्तान जिन्होंने 4 विकेट लिए हैं उनकी गेंद पर ये छक्का लगा। धीमी गेंद, शॉर्ट गेंद, घुमा दिया उसको, उस ओर फील्डर मौजूद है, वहां पर खड़ी हुई है नशरा संधू, उठाएंगे लेकिन तब तक एक रन ही और मिलेगा। 10 गेंदे 4 रन, अब तो ये श्रीलंका का मैच होना चाहिए। और कुछ सोती हुई, चिंतित सी, मायूस सी, निराश सी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना उस जगह जा रही हैं जहां से वो दौड़कर ये तेज बॉलिंग कर रही हैं। 4 रन चाहिए जीतने के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए। मुकाबला बहुत जोरदार होगा, श्रीलंकाई टीम में संघर्ष करने का जबरदस्त मादा है। 4 गेंदे शेष हैं इस ओवर में भी और 4 रन ही चाहिए। इत्मीनान से खेला, दायरे के अंदर गेंद रुकी नहीं, दूसरे फील्डर भी उस गेंद के ऊपर पसर गए इससे पहले कि वो उस गेंद को उठाएं, तब तक दूसरे रन करीबी पलट कर आ रहे हैं तेजी के साथ। आयशा जफर जब प्रयास कर रही थी उस गेंद को लेने के लिए तो वो उनके नीचे की तरफ गेंद अंदर चली गई और तब तक वो रन करने में आसानी हुई। तो 2 रन रह गए हैं बनाने के लिए, 3 गेंदे इस ओवर की और फिर 6 गेंदे, 9 गेंदों पर ये 2 रन बनाने हैं। 1 रन चाहिए स्कोर को बराबर करने के लिए और 1 रन और चाहिए जीतने के लिए। 1 रन मोर एंड स्कोर इज इक्वल, 129 for 6। बहुत खफा नजर आ रही हैं इस समय नशरा संधू, तैयार, कूल एस कोकोम्बर, ठंडे दिमाग से खेल रही हैं। ओ, और जैसे ही मैंने कहा कमेंटेटर्स कर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, 2 रन चाहिए, 2 सिंगल काफी हैं, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और इस तरह से वो परेशानी में पड़ सकती थी। थोड़ी सी फास्टर वन थी, बहुत बाहर नहीं थी, स्टंपिंग करने की कोशिश थी लेकिन वो क्रीज में सुरक्षित थी, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। 8 गेंदे 2 रन अब चाहिए, 129 6 विकेट पर, जीत के लिए चाहिए 131, बराबरी के लिए चाहिए 130। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना बॉलिंग कर रही हैं, दाएं हाथ से तेज बॉलिंग, ओवर द विकेट वो कर रही हैं, दाएं हाथ के बैटर उनके सामने हैं। मुनीबा खड़ी हुई हैं, थोड़ी ऑफ साइड में हट कर खड़ी हुई हैं, ऑफ स्टंप के पास और उससे थोड़ा सा और वाइड खड़ी हुई हैं, बिल्कुल चिपक के खड़ी हुई हैं, पास खड़ी हुई हैं स्टंप्स के। और फातिमा सना की अगली गेंद और उसको उल्टा रैम स्ट्रोक खेल दिया है, इसमें 4 रन और श्रीलंका ने प्रवेश कर लिया है 2026 के एशिया कप के फाइनल में।
1: यस, व्हाट अ स्ट्रोक दैट वाज, रियली टेकिंग द डिफेंडिंग चैंपियंस इनटू द फाइनल ऑन संडे वेयर दे विल मीट इंडिया। श्रीलंका विन बाय 4 विकेट्स, इज अ मैच व्हिच हैज गॉन टॉपसी टर्वी, pendulum swinging from one side to another, and finally it was that partnership between Harshita and Kavisha which really tilted the match in favor of Sri Lanka. And then they had Nilakshi at the end coming good and pulling off a fine victory for Sri Lanka, and so the reigning champions would try to repeat their heroics from the last edition, Vineet, and challenge India in the final on Sunday, the day after tomorrow.
0: Oh, stroke kya khela, bat ko ulta kar liya, chehra aasman ki or, aur usko scoop kar diya wicket keeper ke sar ke upar se, piche wali side screen ki or se, lajawab stroke, presence of mind.
1: Yes, absolutely, Sri Lanka booked their place in the final with a fine 4 wicket victory. One's heart goes out to the Pakistan captain Fatima Sana for her all round heroics, 47, 4 wickets but going in vain. And it is the Sri Lankans, the defending champions, who will play the final on Sunday. Much to look forward to in the program which is coming up, the post-match show. And it is over to our host Gitanjali Soni and Munish Jolly, along with our experts.

0: பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச்.
1: Yes, it is done and deal is sealed. Welcome to the player of the match, and very soon we'll get to know. But right now the news is that Sri Lanka will be joining India in the finals, and that's going to be a cracker of a beginning. And right now we are very happy and excited to welcome you all in the studio. I'm Geetanjali Soni, with me is Munish Jolly, and our experts are very much around, and they are going to share their expert opinions soon. Soumitra Bose, senior sports journalist. Vaishali Mathur, former Indian cricketer. Welcome one and all.
2: बड़ा इमोशनल मोमेंट हो रहा है यहाँ पे.
1: अच्छा.
2: जब क्रिकेट का मैच इतना क्लोज हो जाता है ना, तो बड़ा इमोशनल हो जाता है.
1: You know,
2: setting a target of 130, and you know, it's a cliffhanger.
1: I know.
2: If not the last over, but then you know, 6 wickets down. Soumitra Bose, आप भी ऐसा फील कर रहे हैं सर?
3: जी हाँ. I mean, pure 100% entertainment. What a finish. I mean, it went top and down. Wonderful finish. I think the Sri Lankans played like defending champions, and from a very precarious situation, winning with ease. Fantastic.
1: Actually, Fatima, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, हमने जब शुरुआत की थी शो की, तो सबका जो फेवरेट था वो बेसिकली हर कोई कह रहा था कि श्रीलंका ही जीतेगी. मेरे मुँह से फातिमा निकल गया, क्योंकि फातिमा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. वैशाली, आपको क्या 1% भी लगा था कि जिस तरीके से इनिशियल विकेट्स श्रीलंकन टीम के गए थे और कॉन्फिडेंस काफ़ी शेकी लग रहा था, दिस इज़ नथिंग लेस देन मिरेकल आई थिंक.
4: या राइट, क्योंकि कैप्टन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उस साइड से दिखी नहीं थी बैटिंग हैंड से. लेकिन उसके बाद जैसे विकेट 2 फॉल हुए, 3 हुए, 4 हो गए, एंड उसके बाद भी किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. आई थिंक जितने भी फैंस देख रहे, किसी को भी इतना भरोसा नहीं था कि आज श्रीलंका जीतेगा, क्योंकि इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एंड बॉलिंग जो कर रहे थे आज पाकिस्तान टीम, लग रहा था कि आज फाइनल यही उठा के लेके जाएंगे.
1: Absolutely.
4: लेकिन उसके साथ जिस तरह से दिलारी ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है, एंड लास्ट में 15 बॉल्स एंड 14 रन्स रह गए थे, एंड जो जिस तरीके से एक फ्लोलेस बैटिंग हुई है, एंड उसके साथ साथ जो पीछे उन्होंने स्कूप करके खेला है, वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी. एंड पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रही है, 60+ रही है दोनों की पार्टनरशिप, तो मैं कहूँगी कि आउटस्टैंडिंग है रहा है ये मैच. एंड इस तरीके का ये चकाचौंध करने वाला जो आज का मैच था, वो किसी ने भी अज्यूम नहीं किया था पाकिस्तान टीम के साथ कि 130 वो स्कोर करेंगे एंड उसके बाद इतनी अच्छी फाइट देंगे.
1: एब्सोल्युटली. एंड सुमित्रा, आई एम स्टिल लाइक इन डिसबिलीफ. आई वाज डबल चेकिंग माय सेल्फ वेदर आई एम अनाउंसिंग करेक्टली. श्रीलंका फाइनली हैज वन एंड दे आर इन फाइनल्स. दिस इज एक्चुअली क्वाइट मिरेकुलस आई बिलीव.
3: दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम. लाइक इन फैक्ट इन द मिडिल शो हम पावर प्ले की बात कर रहे थे. आप देखिए, पावर प्ले डिड नॉट कम इन टू प्ले एट ऑल. कि जब आप पाकिस्तान बैटिंग कर रहे थे, दे वर यू नो 4 डाउन फॉर 54 राइट इन द 10th ओवर, एंड श्रीलंका वैसे ही दे वर 33 for 4. तो मोर ऑर लेस तो द पावर प्ले वॉज वर्किंग वेयर ऑन बिहाफ ऑफ द बॉलिंग साइड.
1: यस.
3: And I think in spite of the fact that Pakistan itna acha bowling kiya, itna acha fielding kiya, and the way the middle order and the lower middle order won the match for Sri Lanka talks of a very well organized, well orchestrated jo backroom jo aapko jo hota hai, that they did not panic.
1: Ji.
3: That not to panic in such situations and yet win a match against a decent bowling attack when the ball was turning. And the best thing was how they constructed the innings, how they paced the innings. One ko twos karna, twos ko threes karna, then not to lose. There were times when they did not even score boundaries. Dekhi char chawa, but finally how they paced the innings, and they won very, very comfortably, considering the fact that they were under so much pressure.
1: Gee, but I think there are few people who are never under pressure, Munish, and that's our callers, and they are already रेयरिंग टू गो. एक बार फिर से अपने श्रोताओं को हम नंबर बता देते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं 2342108 3 2342108 5 और 011 हमारा कोड है. और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर. हेलो मिस्टर रेड्डी, हाउ आर वी?

0: बहुत बहुत अच्छे हैं, कहिए क्या कहना चाहेंगे आज। जी हमारे एक्सपर्ट जरूर बताएंगे कि आने वाले फाइनल के लिए क्या तैयारी होने वाली है हमारी। सो हु वुड लाइक टू फर्स्ट टेक दिस क्वेश्चन। वैशाली, आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कैसी स्ट्रांग तैयारी है हमारी?
1: देखिए, श्रीलंका एंड इंडिया दोनों ही टीम एक दूसरे के बराबर बिल्कुल एक ही लेवल पे है। जो अच्छा खेलेगा वही ट्रॉफी लेके जाएगा। और बैटिंग एंड बॉलिंग एक ऐसा पार्ट है जो हर कोई निभाता है अच्छे से, लेकिन जहाँ पे फील्डिंग अच्छी होती है वहीं एक आपका ट्रॉफी की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जहाँ पे लैक कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि हम बैटिंग में कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, वहाँ श्रीलंका भी कर रही है। सो दोनों साइड से पलड़ा सेम ही है।
0: जी पलड़ा सेम है। मुनीश, आप वाकई मुझे लग रहा है किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इस वक्त।
2: मुझे बहुत दुख हो रहा
0: किस लिए?
2: है और सुखी भी फील कर रहा हूँ मैं। बहुत सुख सुख मिल रहा है मुझे, कितना कंपेटिटिव गेम खेला। बट दादा, जस्ट कमिंग बैक टू द गेम, यू नो देयर इज नो DRS एंड दैट्स अ बिग एरिया ऑफ डिस्कशन, स्पेशली व्हेन यू सॉ कविशा दिलहारी, शी वाज अ सेट बैटर गेटिंग LBW टू फातिमा साना, कपल ऑफ रीप्लेज वी ऑल्सो गेट टू सी ऑन द टेलीविजन। But don't you think that you know the AFC should now take you know a definite step so that you know such errors are not committed again?
3: Unfortunate not to have DRS in such a situation, especially when you're doing a continental championship. It's something I'm quite surprised to see, because she was definitely not out. आपने तो देखा ही होगा, हमने जो रिप्ले में क्लियरली देखा है कि there was an inside edge और उसको आउट दिया गया है। If Sri Lanka would have, imagine if they would have lost this match, this would have become a very controversial point of view. I am more surprised because देखिए, Asian Cricket Council का प्रेसिडेंट कौन है? ICC का जो सबसे बड़े आदमी वही है। The richest cricket boards are in Asia. India is there, India is playing. Pakistan, then you have Sri Lanka, you have Bangladesh. Some of the most competitive cricket boards, and it is in Asia, and it is being Dubai. Dubai mein ho raha hai, aur ICC ka headquarters kahan hai? Dubai mein hai. Aur phir bhi DRS nahi hai. Such elementary things jo actually makes a difference between the right decision and the wrong decision. I am very, very surprised.
0: It is.
3: And fortunately, Sri Lanka won this match. Agar ye match haar jaate, this would have become a pain point and probably a heading. And because media would not have been very kind to the cricket authorities, definitely Asian Cricket Council and I would say ICC is equally responsible because the cricket's headquarters are in Dubai. Aapka jo jo the top members of ICC are also ICC top members. So DRS hona to bahut hi zaruri tha.
0: Ji, aur is waqt bahut zaruri, aur hamare callers hain, ek aur caller jud gaye hamare saath. Hello. नमस्कार जी, नाम बताइए अपना। जी कहिए क्या कहना चाहेंगे। जी बोलिए। जी जी बिल्कुल, यही कंसर्न हमारे श्रोताओं की रहती है। हर कोई चाहता है कि उनकी टीम बेहतरीन तरीके से खेले। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त हमारे श्रोता जानना चाहेंगे, वह फिर आपको बता सकते हैं हम कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल अपनी जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। 2342108 3 और 2342108 5 हमारा नंबर है। और मुनीश, आई जस्ट वुड लाइक यू टू ब्रिंग बैक सम एनर्जी प्लीज़।
2: वेल देन द क्वेश्चन इज, वैशाली आपसे जानना चाहूंगा, पूरा मैच आपने देखा, जल्दी से प्लेयर ऑफ द मैच किसको आप देना चाहोगे?
1: मैं फातिमा को तो नहीं दे सकती अभी क्योंकि वो जीते नहीं है, बट स्टिल मैं कहूंगी कि ये जा सकता है कि इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन
2: दादा, एक्चुअली इवन इफ शी इज फ्रॉम द लूजिंग साइड, राइट,
3: यू आर लुकिंग एट द प्लेयर ऑफ द मैच।
0: ऑल राइट, सो प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, आइए जानते हैं।

0: श्रीलंका टीम के पास 17 एंड 19 ईयर्स के यंगस्टर्स हैं एंड इंडिया टीम के पास 20 से अबव हैं, तो देर इज़ अ डिफरेंस और वो लॉन्ग टर्म के लिए श्रीलंका को देखे जाएंगे। तो हमारे जो इंडियन टीम के हैं वो एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ जो यंगस्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस ही उनके जो ऑलरेडी इतने सालों से इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है वो दिख नहीं रहा है कि वो उतना एक्सपीरियंस लेके आए हैं। एशिया कप में इस तरीके का जो हमने अभी तक बैटिंग देखी है वो अभी तक दिखा नहीं हमें। तो होपफुली फाइनल फाइनल की तरह खेला जाएगा इंडिया की तरफ से एंड वो बेटर वे में खेला जाएगा और वो वन स्टेप हम फॉरवर्ड भी करेंगे और ट्रॉफी अपने घर लेके आएंगे।
1: सुमित्रा, over and over again we are hearing the point of concern right now is the middle order. Even our callers are concerned, they are calling in and asking that what about middle order of Indian cricket team. So what do you think, they need to add something else to their playing capability or what exactly it takes?
2: No, I think India is a very settled team. Jyada experiment karne ki koi zarurat nahi hai, as Vaishali said, they are full of experience and they have the temperament to win big matches. And see, from 1 to 8, our people, all our girls are very, very capable. So capable that you can rotate the batting order, right? Like somebody like Deepti Sharma, she's a complete match winner. Anytime she can win. Similarly, they have man-to-man, probably India richer in experience. And big match experience, unka temperament hai. Smriti Mandana, Harmanpreet. You look at it, you name anyone and they've got everything. Shefali Verma. My only point of concern, if you really ask me, is overconfidence. This is one thing I dread. You know, any team, even in the match against, let's say, the semi-final that we won, Shefali Verma was the kingpin. Because of her run, she won, but she got 4 lives. In a big match like a final, where Sri Lanka ki paas itna acha fielding hai, bowling hai, you cannot afford to make so many mistakes. Imagine if this match, if there was a batsman like, you know, say Harshita, she would have won that match if she played for Bangladesh. Unko char chances ka zarurat nahi hai. So I think somewhere down the line, mujhe lag raha hai ki India's biggest problem is themselves, not Sri Lanka. Ki confidence, and they have to bring 100% in batting, bowling and fielding. And of course, Sri Lanka, after this win, this tarah ka koi jeet gives you another 200% morale boosting. So they'll come out all the way to play, all guns blazing, and they're defending champions, and they have showed how capable they are today.
1: Right.
3: वैशाली, एक बॉलर है उनका जिक्र किए बगैर ना लग रहा है कि प्रोग्राम पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है, जो बेस्ट परफॉर्मेंसेज हैं, जो हाइलाइट्स हैं, उनको भी मद्देनजर रख के डिस्कस करना है। उम में हानी जो ऑफ स्पिनर हैं, 4 ओवर गेंदबाजी की, 19 रन दिए, भले ही 1 विकेट लिया उन्होंने, जो गुड ऑफ स्पिनर है ना, तो लगता है कि पाकिस्तान की वो जो एक सैड स्टोरी चल रही है उनकी क्रिकेट को लेकर, उसमें उम में हानी कुछ एक उम्मीद की किरण जगा रही है।
0: देखिए, पाकिस्तान टीम के पास है ना बॉलर्स की कमी नहीं है, उनके पास जैसे हमने अभी देखा और अभी कैप्टन की बात भी सुनी हमने, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि हम बॉलिंग एंड हम फील्डिंग पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वी नीड टू इम्प्रूव इन बैटिंग। और वो बैटिंग पे अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके पास 1-2 बैटर आ जाएंगे तो एक विनिंग टीम भी बन सकती है वो आने वाले फ्यूचर के लिए। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलर्स हैं, चाहे वो फातिमा की बात करें या किसी भी ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर, किसी की भी बात करते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग बॉल डाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक जो हो रहा है वो बैटिंग में हो रहा है, क्योंकि उनके पास 2 से 3 ही बैटर है, उसके अलावा वो बैटिंग नहीं कर रहे। अगर वो उनकी विकेट्स गिर जाती है तो उसके बाद वहाँ उस पिच पे खड़े होने के लिए कहीं भी कोई भी रन बना नहीं रहा है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जैसे अभी बॉस जी ने बोला कि अभी हमारी जो इंडियन टीम है, हमारी जो स्मृति मंदना है, वो वहाँ पर जब वो बैटिंग करने आती है शेफाली के साथ में, तो दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि स्मृति सिर्फ पेस अपना वक्त लेके, अपना टाइम लेके वहाँ पे वो प्लेस करके खेलती हैं, जब उनको लगता है कि ये बॉल हिट करने के, वो उसके अकॉर्डिंग ही करती है एंड उनको अपनी विकेट की वैल्यू पता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वही दूसरी साइड पे जब शेफाली नॉन स्ट्राइक पे खड़ी है तो उनको ये पता है वो यहाँ पे सिर्फ हिट करने के लिए आई हैं, क्योंकि उनको पावर प्ले का पूरा उपयोग करना है
1: जी।
0: तो ये एक

0: थोड़ा डिफरेंस है हमारा, जो हम श्रीलंका के जो कैप्टन हैं उनकी अगर जल्दी विकेट गिर जाते तो हमारे पास एक स्टेप हम आगे हो सकते हैं उसमें।
1: ऑलराइट, और इसमें तो अब कोई दोराय नहीं है कि दोनों जो टीमें हैं बिल्कुल अपनी जान लगा के खेलेंगी फाइनल्स के लिए। आज हमने देखा था सुमित्रो, मिथाली अयोध्या को इंक्लूड किया था टीम में, क्या ये एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं है, 4 ओवर में 33 रन दिए हैं मिथाली ने, बट आपको लगता है कि भारत के अगेंस्ट इनको यूज़ करने की तैयारी हो सकती है?
2: इट वॉज जस्ट अनलाइकली, बी वेरी केयरफुल विद टीम सिलेक्शन। जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, काफ़ी स्पिन देखने को मिला है, चाहे फर्स्ट इनिंग्स में मिला, सेकेंड इनिंग्स में मिला है, बट द पॉइंट इज दिस, दिस काइंड ऑफ बॉलिंग विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू इंडियंस, स्पेशली बैड लाइन एंड लेंथ अगर आप बॉलिंग करिएगा तो समबडी लाइक शिफ अली एंड स्मृति विल किल, यू नो यू कैन अफोर्ड टू डू ऑल दैट अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान की बैटिंग जैसे वैशाली ने कहा चल नहीं रहा था, आज मान लीजिए कि फतेह मक्का रन आ गए, अगर नहीं आते हैं तो 40 और देन यू वुड हैव सीन दैट दे वुड हैव बीन बिलो 100। सो द पॉइंट इज दिस, यू नो यू मेक एक्सपेरिमेंट्स अगेंस्ट टीम्स दैट आर वीकर, बट यू कांट मेक एक्सपेरिमेंट समबडी लाइक इंडिया।
1: राइट,
2: इंडिया के टॉप सिक्स बैट्समैन दे विल किल यू इफ यू मेक, यू नो, रन लाइन एंड लेंथ अगर गड़बड़ हुआ है। लाइक ही मेंशन द बॉलर्स नेम उमियानी, she was really good. Unfortunately, did not wicket. The way she was flighting, using the width of the pitch and kind of bowling, Muniz was perfectly all right. Unfortunately, she did not get wickets.
1: Right.
2: But this is the format, jo aapka T20 format had. Good bowling always never gets you wicket. The bad ball sometimes gets you wicket, and Fatima got that. For example, when Chamani got out.
1: Right.
2: This tarah she strokes there. Some were loose strokes. When she was on hat-trick, both the wickets were loose strokes. But that's the beauty of the game. That's the way the game is played. So I don't think Sri Lanka will make too many experiments. We'll go on a very trusted team. Very, very trusted team. Just say effective ho sakta hai, impactful ho sakta hai.
1: Right.
2: I think Ayodhya was more of a gamble.
1: Okay.
2: Did not work. But ultimately, it did not matter. Sri Lanka won.
1: Yes, but अभी जो चीज़ बहुत मैटर करने वाली है वो ये देखना है कि फिटनेस भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाली है। आज हमने देखा वैशाली बहुत ही क्रैम्प आ रहे थे टीम को, ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी। आई होप कि हमारी जो इंडियन टीम है वो बिल्कुल तैयार है इसके लिए, एंड दे विल बी फिट एंड फाइन।
0: या श्योर, क्योंकि मैच से पहले है ना इंडियन टीम्स के पास जो फिजियोज होते हैं एंड बाकी ट्रेनर होते हैं वो एक दिन पहले ही प्रिपेयर करते हैं कि आपको इतना लीटर पानी पीना ही पीना है, बिकॉज क्योंकि आप नेक्स्ट मैच में जब आप जाओगे नेक्स्ट डे तो वहाँ पे आपको सन दिखेगा, आपको साथ में मॉइस्चर दिखेगा, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप ड्रेन होती है आपकी बॉडी, तो उससे पहले ही हम इनटेक करते हैं वाटर। तो ये एक थोड़ा क्रैम्प से बचने का वे निकाला है हमारे ट्रेनर्स, इंडियन ट्रेनर्स ने, तो ये इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि वो ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, एंड उनको इंडियन टीम को सिर्फ एक ही बॉलर से बचना है, क्योंकि उनकी बोले उन्होंने ज़्यादा नहीं खेली हैं, सिर्फ देखा होगा, वो है चामुदी जो 17 ईयर्स की है, एंड जब यंगस्टर्स बड़े होते हैं तो उनका वे ऑफ स्टाइल बॉलिंग का हर चीज़ डिफरेंट होती जाती है, तो ये थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है वहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा जज करके फिर खेलना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमारे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इतने अच्छे बैटर्स वहाँ पे बैठे हैं, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे और उनके कोचेज भी उनको बता रहे होंगे, तो आई होप कि इंडियन टीम काफ़ी बेटर करेगी फाइनल के लिए।
1: जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुनीश ने जैसे इनिशियली कहा कि मुनीश को एक इमोशनल ट्रॉमा हो गया, बट मुनीश आई एम जस्ट होपिंग इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर लॉन्गर, आई एम जस्ट नॉट happy seeing you like this.
3: Pakistan ki team haar rahi hai, the cricket is under you know, there are a lot of questions, men and women team both, and you know, especially jab Asia Cup ki baat kar rahe ho to you want the Asian teams to do well,
1: right?
3: But Dada, just coming back to this game where you know, she just mentioned about Chamudi Prabhoda, but India, I think you know, as a cricketer I feel that, you know, it's good to tackle her, you know, bring in a left-hander. A lot of strategies are going to come in. But how important will this game be for the Indian team? You know, they are the world champions in the 50-over format, but that 20-over format is still a struggle. You know, they've, jise Hindi mein kehte na, vanchit ho gaye ki badi trophy lene ke. So how important it's going to be for the Indian team?
2: See, this final will be important ki dono team ke liye kafi important hoga. Because don't forget that immediately after this, they are going to Nagoya to play the Asian game.

0: and, you know, to win and go to an Asian Games, which is no less important. And
1: right.
0: you see, if you look at the composition of the teams, both men's and women's, they are more or less, all the teams are playing there, A teams, the first teams. So in Kelly, women will always be good. And the fact that you will be playing more or less the same kind of teams there also in Japan major Asian Games khelenge. Or yeah, these are you can say a dress rehearsal to the Asian Games. Anybody will like to, because India have always done well in Asian Games. Isliye zaruri hai ki ye match jeetna chahiye. And experience wise, India a wealth of experience. Inke paas itna experience hai, itna depth hai. Shri Chamundi is good, but don't forget that we also play somebody called Sri Charan in the nets. A similar bowling attack, but yes, I mean, the point is this, it is that, again, as I say, overconfidence nahi hona chahiye. Play true to your capability, your caliber, and show your maturity on the day of the fight.
1: और वैशाली, जैसे आज कप्तान ने भी कहा श्रीलंकन टीम की कि वो उनकी जो थोड़ी बहुत कंसर्न है, शायद उनकी फील्डिंग रहने वाली है, एंड आई थिंक दे हैव इनफ टाइम. मुझे नहीं पता, आप ही ज़्यादा बताएंगी कि दो दिन क्या बहुत होते हैं जिस पे वाकई इस पे वर्क कर सकते हैं. लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जो भी कमज़ोरियाँ, जो भी ड्रॉबैक श्रीलंकन टीम के हैं, इंडिया उनको बिल्कुल कैपिटलाइज करे और बिल्कुल बेहतरी से गेम खेले. और जितने भी हमारे श्रोता सुनने वाले हैं, जितने लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, सबकी उम्मीदों पर खरे उतरें. और फिलहाल के लिए इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारे स्टूडियो में जब हमारे इतने पोटेंट एक्सपर्ट्स आते हैं, वो सबकी उम्मीद पर खरे तो उतरते ही हैं, बट वे एंड बियॉन्ड रहते हैं. वी आर सो ग्रेटफुल सुमित्र बोस जी फॉर जॉइनिंग अस. योर इनसाइट इज़ सो मीनिंगफुल एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. एंड थैंक यू वैशाली माथुर, योर क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज ऑलवेज हैव बीन वेरी हेल्पफुल, एंड वी आर very sure that you'll keep on guiding
2: Thank
1: loads
2: you.
1: of people who are willing to learn more about game. And Munish Jolly, thank you so very much. Smile.
3: अब इससे पहले कि हम शो ख़त्म करें, आई थिंक बहुत ही ज़रूरी है कि वी मैंशन अबाउट somebody who had a great rivalry against the neighbors Pakistan. बहुत अरसे तक वो rivalry चलती रही. The late Lala Amarnath, जिनकी आज birth anniversary है. And also, before we sign off, I'd like to wish a very happy birthday to a very dear friend who's been to Akashwani, India's former left-arm spinner, Murali Karthik.
1: Wow.
3: और इन दोनों को जन्मदिन की और birth anniversary की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से.
1: थैंक यू सो वेरी मच. और हमारा बहुत बहुत दिल्ली जो धन्यवाद है हमारी टेक्निकल टीम को जाना चाहता है इस सब की तरफ से, हम सब की तरफ से, मनोज सिंह, संजय कुमार एंड त्रिलोक गुप्ता, प्रोडक्शन टीम वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर, माधवी तिवारी, एंड ऑफकोर्स आवर प्रोड्यूसर शाहनवाज खान. थैंक यू सो वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस आउट विद ऑल द इंटीग्रिटी ऑफ द शो, एंड वी आर सो ग्रेटफुल दैट वी कुड बी हियर. तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, बिकॉज 13 तारीख को आपको बहुत ही बेहतरीन मुकाबला सुनने को मिलेगा श्रीलंका और इंडिया के बीच. तब तक एक बार फिर से हम सब आपका धन्यवाद करते हैं. गीतांजलि सोनी और मुनीश जौली की तरफ से
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया.
0: गुड नाइट. गुड नाइट
3: एंड शुभ रात्रि.
4: प्लेयर ऑफ द मैच.
5: अभी आप विमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
6: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द सेकेंड सेमीफाइनल T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका ऑफ द विमेन्स एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
7: நேயர்களே, துபாய் சர்வதேச விளையாட்டரங்கில் இலங்கை பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கிடையே நடைபெற்ற மகளிர் ஆசிய கோப்பை T20 கிரிக்கெட் போட்டியின் இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தின் நேர்முக வர்ணனையை இதுவரை டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்டீர்கள். 101.4 FM ரெயின்போ பண்பலையில் இனி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கலாம்.

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोजा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक

0: करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों को यथासंभव सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यालय मंत्री की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defence, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's international

0: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोजा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों में यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा योजना पहले से निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: இன்னும் சில நொடிகள் தொடர்வது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வினய் சக்சேனா. अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेज़बानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बना

0: विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्यों देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। कांगो के पूर्वी हिस्से में आरंभ हुआ जानलेवा संक्रामक रोग इबोला अब इस अफ्रीकी देश के 7 प्रांतों में फैल गया है। यह इस बीमारी का अब तक विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता प्रकोप है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। उधर भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम आज सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts, and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement,

0: இன்னும் சில நிலைகளில் தொடர்ந்தது ஹிந்தியிலும் அதனைத் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया।

0: मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9:30 से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि उसने देश की एक प्रमुख तेल पाइपलाइन एहतियातन बंद कर दी है। यह पाइपलाइन ऐसे समय बंद की गई है जब यमन में हौसी विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के पास तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इससे इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के जरिए सऊदी अरब के तेल निर्यात पर खतरा उत्पन्न हो गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट में कल दुबई में भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में आज कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains yesterday. During their bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcomed Russia's International Industrial Exhibition InnoProm India. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar, during their meeting. During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue.

0: பொங்கும் மங்களம் நிகழ்ச்சியில் இதுவரை அல்லூர் ஏ கே ராகவன் அவர்களின் நகசுரை இசை கேட்டீர்கள். கேலமங்கலம் கே சி சந்திரசேகர் அவர்கள் தவில். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே ஃபர்ஹத் நாஸ். अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का आरंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद मजबूत बनाना विषय पर सत्र से होगा। प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
2: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता

0: और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेयरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेयरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने भी संबोधित किया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर आज सुबह 9 बजे से 30 मिनट से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवागमन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले निर्धारित करने और अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है। भारत ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में तेजी लाने और योजना क्रियान्वयन को गति देने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना द्वितीय चरण के तहत कुल 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहरी विकास विभाग सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 9वीं बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। वहीं महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में कल दुबई में भारतीय टीम का सामना पिछले चैंपियन श्रीलंका से होगा। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।